गुरु की जुगत गुरु के पुत्र हो गए। ते गुरु के पुत्र सत्संगी जिथे मिलके बैठ के प्रभु जस करते ने, जेड़ा आके उन्हें सत्संगियां च रल गया, गुरु पुत्रां च रल गया, प्यार दे रंग च रस्ता होया, प्रभु जस कर रहे हैं, प्रभु जस मान रहे हैं। और यह धर्म का मार्ग धरती दे धरन वाले निरंकार प्रभु ने गुरु दे रूप च आप धारण किया, आप बनाया। इस मार्ग ते जेड़े चलते ने धर्म पंथ तरयो धरनी तर आप, जेड़े इस मार्ग ते चलते ने रहे लिव तार ना तावत है, भटकना मुक जाती है, लिव जुड़ जाती है, जीवन का आनंद लेंदे ने। भगत भट्ट मथुरा जी कहंदे ने, कहंदे ने वड्डे भागां वाले ने लोग, मथुरा पन भाग भले उनके, मन इच्छित ही फल पावत है, उन्हां दे मन दी इच्छा प्रभु प्यार नू प्राप्त करना और ये फल प्राप्त कर दे। कहंदे ने उन्हां नू फिर रब दे सुत सूरज दे पुत्र धर्मराज दा डर नहीं रहिंदा, रब के सुत को तिन त्रास कहां, जो चरण गुरु चित लावत है, जेड़े गुरु चरणा नाल मन जोड़ लेंदे ने, उन्हां नू नरक दा डर नहीं, जम दा डर नहीं, ते ना ही किसे सुर्ग दी इच्छा रह जांदी। गुरु चरणा दे प्यार च गड़ूंद होए आनंद लेंदे ने, रंग च रते होए

रखियो ग्रे पीतलो उठ उहां को दौड़ियो आज्ञा में भूख सोई कर सुख सोग हरख नहीं जाने हो।

0: करती हूँ हर जैसे माँ राजू बाबा ऐ पड़े संत। मैं पूछा क्या लगे बड़ी लंबी कथा माँ तनवान दी है।
1: हाँ सुन, हरनाक्ष नादा एक बड़ा शक्तिशाली राजा सी। उन्हें भगवान दी भक्ति करके एक वरदान लिया कि ना वो दिने मरेगा ना राती मरेगा ना अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा ना मनुख कोलो ना किसी जानवर कोलो। भगवान का वरदान लेके वो आप ही भगवान बन बैठा। उस राजे का एक पुत्र सी प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता नु भगवान मनन तो इनकार कर दिता। क्रोध विच आ के पिता ने पुत्र नु तपते थम नाल जफी पान का हुक्म दिता। ते प्रहलाद दे दिल विचों आवाज आई पाले तपते थमा नु जफिया आपे तेनु राम रख लो। प्रहलाद ने थम नाल जफी पाली पर ओदा वाल भी विंगा ना होया। गुस्से विच आके राजा ने तलवार कट ली ते थम पाट गया।
0: मैं भी प्रहलाद बनांगी मां भगवान दा जाप करांगी।
2: मेरी मेहनत मेरी और आपको पुठे पार पाए जा रहे।

मेरा नाऊ जियो जिनी सखी शौर आवे आ जिन्ह ने पति का प्यार प्राप्त किया जिन्ह ने मालक की खुशी प्राप्त की से अंबी छावड़ी है जियो ओ अंबा दी छावे बैठिया खुशियां मान दिया ने पति प्यार दे आनंद विच मगन ने जीवन का रस ले रही है से गुण मंझ नावनी ओ गुण मेरे विच नहीं हौ कह जी दोष त्रेउ जियो मैं किदे ते दोष देवा किसनू आखा माड़ा के मेरी हालत किसने कीती आम तौर ते मनमुख दी ये दशा है कि वो जो भी करदा है ना उदे सामने फिर जो कुछ नतीजा आउंदा है वो आले दुआले ते दोष लभदा है किसी होर दे कारण करके मेरे ते आफत आई है विपता आई है मेरी बेरसी हुई है अपने दोष नहीं देखदा हालांकि पावन बाणी विच बड़ा स्पष्ट किया गया है दद्दा दोष ना देऊं किसे दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजे अवरजना और अपने दोषा वाले झात मार लेनी भी बड़ी वड्डी गुरमुखताई दोष हुंदिया होया गुनाह हुंदिया होया गलतियां हुंदिया होया इन्हां ते निगाह मार लेनी ही बड़ी वड्डी गल है जिहड़ा अपनियां गलतियां वल ना वेखे अपने अगे आए हुए नतीजिया तो भी दूजिया दोषी ठहराने का यतन करे वो बंदा कदे ठीक राह ते नहीं तुर सकता दूजिया च दोष कढ़न वाला बंदा कदे आप ठीक नहीं हो सकता शुद्ध पवित्र ते निर्मलता वो होगा जो अपने दोष लभण का यतन करे इथे अपने दोष लभण की गल महाराज सच्चे पातशाह ने शब्द द्वारा सानू प्रेरणा बख्श की हों कह जी दोष त्रेउ जीउ मेरे अपने ही इन्ने दोष ने मैं किसी काहदा दोष दे मेरे विचों गुण नहीं हन कि मैं पति परमेश्वर को प्राप्त हो सका उसकी खुशी प्राप्त कर सका क्या गुण तेरे विथरा हो क्या क्या किन्ना तेरा नाउ जियो पर असली भगती का मार्ग भी है सुचजी हो जाने का ढंग भी यह है कुछ अज न जीवन चो कढ़न का तरीका भी यही है तेरे गुणा का वर्णन करा क्या गुण तेरे विथरा तेरे गुणा का विस्थार की करा हो क्या क्या कि ना तेरा नाउ जियो केड़े केड़े तेरे ना लावा है इक टटोल ना अंबड़ा हो सद कुर्बाने तेरे जाऊ जियो मिथो ता एक कदम भी तेरे नाल तेरे वल तुरया नहीं जांदा तेरे मार्ग ते मिथो जरा जिन्ना भी तुरया नहीं जांदा ते अड़ किथे गया काम ए रुकिया क्यों है काम ओ महाराज ने कारण बड़ा प्यारा दसा साहब कहते ने सोयना रूपा रंगोला मोती तय माणिक जी सोना दिता तू चांदी बख्शी तू मोती ते माणिक दिते तू से वस्तु सह दितियां मैं तिन स्यों लाया चित जी दात प्यारी विसरिया दातारा जिसने वस्तुआ पदार्थ खुशियां बख्शियां ओनू भुल के मैं पदार्था च परच गई बख्शियां दातां च मेरा मन लग गया दाता विसर गए ते फिर कई बार ऐसा भी होया दाता वाल निगाह रखण वाले बंदे जिन्हें केवल दाता ही वेखियां वो ऐसिया टुचरां भी डाउंदे ने वो कहंदे ने जिन्हां ने भगती कोई नहीं कीती कोई नितनेम नहीं कीता कोई अमृत वेले नहीं उठे कोई सिखी नहीं कमाई कोई गुरु की गल नहीं मनी कोई प्रभु प्यार की गल नहीं की थी, कोई सेवा नहीं की थी, कोई परोपकार नहीं किया कोई सिमरन नहीं किया उन्होंने चढ़दिया कलां कहते ना उन्होंने पदार्थ का घाटा है ना उन्होंने कोई दुख आता है ना कोई उन्होंने परेशानी है कुछ भी तो नहीं होंगे चंगे भले ने कहते ने जेड़े भगती करने वाले नाम लैण वाले सेवा करने वाले ने सिमरन करने वाले ने वह हौके भरते वेखी दे दुखी वेखी दे ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਚਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਦਾਰਥਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਦਾਰਥ ਬੜਾ ਸੁਖਦਾਈ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे ने उना दे पदार्थां दे ढेरां दे पिछे उना दी बेईमानी ते पाप लुके होंगे। जिवें जिवें पदार्थ वधदा जांदा जिवें जिवें सुख दे साधन वधदे जांदे उस मनुख दी आत्मा जमीर मरदी चली जांदी। वह कदे किस दा भला नहीं सोच सकता, वह यह सोचता है किस नूं मार के की लिया जा सकता है, किस तो खो के की प्राप्त किया जा सकता है। ते फिर वह यह समझदा है जब बिरती इस पासे लग गई कि खो खिंज के बेईमानी नाल गलत ढंगा दे नाल जिवें भी हो सके कुछ लभना है कुछ प्राप्त करना है वह लै जाता है, उहदे कोल हो भी बड़ा कुछ जाता है। लेकिन उस तरह जिवें मकड़ी जाला तनदी है तो आप ही फस जाती है। बिल्कुल इसे तरह पदार्थ की दौड़ च लगे लोग, सुखां दे साधनां की दौड़ च लगे लोग अपने आले दुआले हीरे मोती जवाहरात पसार लेंदे ने जिहड़े रोड़ होके चुभण लग पैंदे, सुखां दे साधन पसार लेंदे ने जिहड़े कंडे हो जांदे। जिहड़ा बंदा मालक की दात जाण के इन्हां सुखां नूं भोगदा है वह आनंद लैंदा है, ते जिहड़ा यह समझदा है कि मैं हेरा फेरियां दे नाल यह साधन प्राप्त कर सकना वह मालक नालों टुट गया, वाहिगुरू नालों टुट गया, उहदे वास्ते यह सारा कुछ दुख का कारण बन जाता है। इत्थे महाराज ने उन्हां दी गल कीती है जिहड़े जाण के दुख का कारण पैदा कर रहे हैं। मंदिर मिट्टी संदड़े आखिर तां जिहड़े मकानां च असीं रहिंदे हां मिट्टी है, मिट्टी का रूप वखरा वखरा हो सकता है, वह मिट्टी पत्थर के रूप च भी हो सकती, वह मिट्टी सीमेंट ते लोहे के रूप च भी हो सकती, आखिर तां मिट्टी है। पहला भी मिट्टी सी, मिट्टी विचों धात बना ली या मिट्टी चो कोई पत्थर चुन के लै आंदा है या मिट्टी नूं पी के सीमेंट बना रहा है ते मकान बना के बह गए, यह पहला भी मिट्टी सी, आखिर एक दिन फिर इसने 100-200 वरे बाद फिर मिट्टी हो जाए। साहब कहते ने मिट्टी नाल तां चित ला लिया, मंदिर मिट्टी संदड़े उन्हां मिट्टी दे मकानां नाल तां मोह पा लिया, वह तां चंगे लगन लग पए। मंदिर मिट्टी संदड़े पत्थर कीते रास जीओ, आखिर तां हीरे जवाहरात मोती पत्थर ही ने, पत्थर दीआं किस्मां वखरीआं हो सकदीआं, पत्थर चिट्टा भी हो सकता है, पत्थर कसमैला भी हो सकता है, पत्थर लाल भी हो सकता है, पत्थर चमकदार भी हो सकता है, तां पत्थर ही ना, पत्थर नरम भी हो सकता है, पत्थर हीरे वर्गा ना तोड़िया जा सकण वाला भी हो सकता है, बहुत सख्त भी हो सकता है, पत्थर वखरे वखरे ने। मैं पत्थरां नूं अपने जीवन की पूंजी बना रहा, पत्थरां नाल तां प्यार कर लिया है, पत्थरां दा मुल तां पाउणा शुरू कर दिता है, मालक की दरगाह च प्राप्त होने वास्ते उहनूं चंगिया लगण वास्ते मैं कोई गुणा का मुल नहीं पाया, गुणा का हार नहीं पाया, पत्थरां दे हार तां गल विच पा लै, गुणा का हार कोई ना पाया। मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर कीते रास जीओ हो, इनी टोली भुलीस मैं इस पासे इस मार्ग ते इन्हां खेडां विच ऐसी परत गई ते सिकंत ना बैठी पास जीओ, पति परमेश्वर दे कोल बहण दा वक्त ही ना निकलिया। और बिल्कुल इस वेले ऐसा ही हो रहा, इस युग दे विच पदार्थवास दे युग विच पदार्थ दी दौड़ च लगे बंदे केवल यह वेखदे ने कौन किन्ना कमाई कर गया, किस दे कोल किन्नी माया है, किस दे कोल किन्ने साधन ने, यह तां गिणती कीती जा रही। विरले भागां वाले ने जिहड़े यह वेखदे ने प्रभु दे नेड़े कौन किन्ना होया, भगती दे मार्ग ते कौन किन्ना चले है, सेवा विच कोई किन्ना लगा है, परउपकार किदे जीवन च कितना है, इस पासे ध्यान विरलियां दा जांदा। जिन्हां दा ध्यान इस पासे जांदा है वो कई बारी संसारक पद्धर तो जे दिवालीए भी नजर आउंदे होण, भुखे भी नजर आउंदे होण, जो आनंद उन्हां दे अंदर बनिया है, जो सुख उन्हां दे अंदर बनिया है, वह असीं जाण भी नहीं सकते। साहिब चौथे पातशाह वचन करदे ने, जे सुख देहे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे तिहाई, जे भुख देहे ता इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। वह कहड़ी अवस्था है जिहड़ी कहिंदी है भुख विच भी मैं अपने आप नूं रजिया प्रतीत करां, दुखां विच भी मैं अपने आप नूं सुखी प्रतीत कर सकां, आखिर तां कोई ऐसा आनंद है जो हिरदे ने प्रतीत कीता, मनमुख उस आनंद की सार नहीं लै सकदा, ते ओ मालक तो विछड़दा विछड़दा बहुत दूर निकल जांदा। सिकंत ना बैठी पास जीओ, अखीर की हुंदा है, अंबर कूंजा कुरलियां रुत्तां बदलदियां, रुत्तां बदलदियां दे सुनेहे देण वालियां कूंजा आकाशां च विछोड़े दे गीत गाउंदियां ने, पग बहिठे आए जीओ जीवन दा पिछला पहरा आ जांदा, जिंदगी बदलदी बदलदी बीतदी बीतदी सिरे ते आख लाउंदी, साधन चली साहरे, हुण मालक दे दर ते जाण दा वक्त आ रहा है।
ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀ? ਕੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਆਈ ਆ? ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਜੋਗ? ਸਾਧਨ ਚੱਲੀ ਸਾਹੁਰੇ, ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇਸੀ ਅੱਗ, ਸਭਨਾ ਸਾਹੁਰੇ ਵੰਜਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਆਖਰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਚੱਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਚੱਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਜੋ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਣਾ ਕੋਈ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਸ ਐਸ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਵੇਗਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ, ਜੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਰੱਬ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੌਂ ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਸੋਚ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਰੱਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਗੜੇਗਾ ਕੀ? ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋਵਾਂ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਹੱਥੀਂ ਲੱਡੂ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ। ਚਾਰ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ। ਆਖਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਮੌਜਾਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ? ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਰਚੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਅੰਤ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਨੇ, ਰੁਪਈਆ ਬੜਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਉਲਝਣ ਚੋਂ ਤੰਗ ਪੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹਿੱਪੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨਿਤਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਪਾਸਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ, ਬੇਸਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਬੇਰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਕਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪਰਤ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉੱਧਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਧਨ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਖੀਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆਤਮਕ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗੀ ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ, ਬੜਾ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਬੜੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਔਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਦਾਰਥ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ? ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਖੀਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੱਲੇ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜੀ ਹਰ ਤੇ ਵਿਛੜੇ ਸੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਵਸਣ ਪੈਣ, ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਪਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿ ਧੋਖਾ ਜਿਹਾ ਭਰਮ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਸਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਨੀਂਦਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਦਮਸਤੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਗ ਕੇ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁੱਤੀ ਸੁੱਤੀ ਝਾਲ ਥੀ ਆ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ 'ਚ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਰਾਤ ਬਲਕਿ ਲੰਘਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨਾ ਵਿਹਾਵੀ ਸਾਖਤਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਲੰਘਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਤ ਲੰਘਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਘੜੀ ਵੇਖਦਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਰਾਤ ਕਦੋਂ ਬੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੁਮਾਰਗ ਪਏ ਹੋਏ, ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਣੀ। ਸੁੱਤੀ ਸੁੱਤੀ ਝਾਲ ਥੀ ਆ, ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ,
जिदे बारे महाराज कहंदे ने झा ला के उठ नाम जप निस बासर आराद अमृत वेला होवे ते उठ के नाम वाले पासे लग उन दा अमृत वेला भी लंघ जांदा है उन दा चाल भी लंघ जांदा है चाल आगे भी नहीं उठ सकदे हो सुती सुती चाल थिया पुली वाटड़ी आसियो पुठे राह ते पई होई तैं सह नालो मुतीस तैथो मालक तो लुटी गई वखरी हो गई नखेड़ दिती गई दुखां कूतरी आस जियो दुख पले पै गए दुख झोली च भर गए अंत विच अरदास बख्शिश कीती है तुद गुण मैं सब अवगुणा मैं औगुणा नाल भर गई मैं अपने पले औगुण बन ले तैथो टुट के औगुण ही आने सन आखिर जिन्ने शराबी कबाबी जुआरीए ते बदियां करन वाले लोग ने उन्हें कोई धर्मी भी हो सकता है ते जेड़ा बंदा कदे ऐसा जापदा होवे ना कहंदे ने जी फलाना अमृत छक के गुरुद्वारे जाके फलानी बुराई भी करता है समझ लेना वो धर्म दे मार्ग ते केवल पखंड कर रहा होवे वो धर्म दे मार्ग ते एक पैर भी नहीं तुरिया धर्मी होना ते विकारी होना आपस च रलदा ही नहीं धर्म कमाउण वाला बुराई कर सकता ही नहीं जिस बंदे दे जीवन च धर्म माड़ा जिहा भी प्रवेश कर गया वह तो नेकी फैलावेगा नेकी की खुशबू ओदे जीवन च फुटेगी बुराई ओदे जीवन च रह नहीं सकती जे बुराई है तो समझ लेना जीवन कोई नहीं आरंभ होया अजे धर्म कोई नहीं शुरू होया जीवन विच भावे किसी का होवे ते भावे अपना होवे जे बुराइयां वाले पासे काम वाले पासे चित जांदा है गलत खान गलत पीन गलत खेडन गलत बोलन गलत फिरन वाले पासे चित जांदा है समझ लेना धर्म ने अजे पैर नहीं पसारे अजे धर्म जीवन विच प्रवेश नहीं कर सकिया दाखिल नहीं हो सके ते आपां जतन करना है गुरु नानक का धर्म साडे जीवन च प्रवेश कर जाए जिस दिन गुरु नानक साडे जीवन च प्रवेश करनगे उस दिन बुराइयां अपने आप नटदियां चलिया जाणगे धर्म जिस दिन जीवन च प्रवेश करेगा पावन बाणी चो गुरमत नूं धारण करके गुरु नानक की सिक्ख्या नूं धारण करके भाई साहब भाई गुरदास जी बड़ी प्यारी गल कहिंदे वह कहिंदे ने सिंह बुके मृगावली भन्नी जाए ना धीर धरोआ जिसले शेर गजदा है ना तो जंगल दे बन दे मिर्गां नूं पशुआं नूं भजना पै जांदी है सिर्फ गर्ज सुन के उहदी आवाज़ सुन के भजना पै जांदी है बुकिया सिंह उजाड़ च सब मृगावल भन्नी जाई शेर गर्जिया ते मृगावली भजी जांदी नजर आउंदी ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਗੱਜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸਲੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਜਦਿਆਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਨੇਕੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਗਰਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਚ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸੁਚੱਜ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਸੁਚੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਾਰ ਕਦਮ ਤੁਰ ਕੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕੁਸੰਗਤ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰੇਗਾ ਕੁਝ ਆਪ ਤੁਰੇਗਾ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਤੋਰ ਲੈਣਗੇ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣਾ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਹਾਗਣਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਜੋਗਾ ਚੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਂ ਸਹਿ ਨਾਲੋ ਮੁਤੀ ਅਸ ਦੁੱਖਾਂ ਕੂਤਰੀ ਆਸ ਜੀਓ ਤੁਧ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਭ

हर वक्त तेरे मन दी हरेक कामना पूरी कीती है। सेवकां वांग उस दी भगती करदा रहो अते हे दास नानक आख

माता जी का कोरा जवाब सुन के जलाद परत आया, कंध मुकम्मल तैयार हो गई, साहिबजादे असहे ते अकह कष्ट सहार दे होए शहीदी पा गए, धरती कंब उठी, आसमान डोल गया।

मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा जो पिंड सतिसा सब कुछ है तेरा माने।

तो तुम ते लेना, तुम मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सेना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता।

जियो तुम्हारी कृपा ते तुझ पछाणा तुम्हारी ओट तू है मेरा माणा तू बिंदु जा और मैं कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो तू बिंदु जा और मैं कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो क्या कहिए किस आस सुनाइए जो कहना तो प्रभु जी पास सब कुछ कीता तेरा वरते सदा सदा तेरी आस जी दे वड्याई ता तेरी वड्याई

आठ पहर हर त्याय के मन इच पुजाई, मन इच पुजाई कर सेवा सेवक प्रण प्रेम।

हर हाँ नानक कस मल जाए नारे।

ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जिहड़े बोल बोल के मैं तेनू अपने आप ते मोहित कर लवा। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा भरिया। तकना के परमात्मा रूप कैसा वेखदा, शारीरिक रूप नहीं वेखदा,

कुलवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास है। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आप दी मंग है के बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है, पई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला होवे, किसे दा मन ना टुटे। हे परमात्मा, जेड़े गुण तेनू चाहिए ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।

कोई ना रखे। विश्वास घाती अकिरत कण, विश्वास घाती किसनु कहने जेड़ा किसी नु प्यार विच ले आके बसा के मारे, अपना बना के मारे।

सतगी ने

आज हम गुरु नानक के शरीर के दर्शन करते हैं, उनके चरणों की छोर प्राप्त होती है। इतने बड़े भाग होते हैं हमारे। लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कम आता है। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते हैं। भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

तो जागता है। गुरु सूरज के मापिक है, ये बात अलग है। हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद, दरवाजे खोल।

लड़ाई विच ओ हाल करना है कि दुनिया नू हैरान कर देना है। ए गल क्यों कही, आओ इस बारे विचार करिए। आनंदपुर साहब धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज निवास करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने

सेवक बन गए, पर पहाड़ी राजे इतने गुलाम हो चुके सन, इन्ने नितानी हो चुके सन, इन्ने मन कमजोर हो गए सन के मुगल बादशाह दे अगे सिर नहीं सन चुक सकते। सगा औरंगजेब दे नाल मिल के गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल लड़ाई शुरू कर दी। उन्हां मूर्खां ने यह ना सोचिया कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साडे भले वास्ते लड़दे ने, सगा ये लोग गुरु साहिबां दे नाल लड़ाई छेड़ बैठे। लड़ाइयां ते पहला भी हुईयां,

एक कागज लो, उस कागज ते ए लिख दियो, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं, बेशक चले जाओ। अज भाई मान सिंह ने अपनी जान नू प्यारी समझे, कागज लिया उते लिख दिता, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। 40 इन्ना दे साथी उन्ना भी लिख दिता, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। अज मुश्किल दी घड़ी आई, भाई मान सिंह अपने साथियां समेत मुश्किल दे समय गुरु नू छड़ के अपने घरां नू तुर पए, पर गुरु डोलिया नहीं, गुरु डरिया नहीं, क्योंकि गुरु सच ते खलोता है, सच वास्ते लड़दा है, अपने भले वास्ते नहीं, ओ ते दुनिया दे भले वास्ते इस दुनिया विच आया है।

गुरु नु ए बिदावा लिख के दे आए, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। अपने घरां नु तुर पए। जदों भाई मान सिंह अपने साथियों दे नाल अपने घरां नु पहुंचे, घरवालियां ने पुछया, सुनाओ की हाल है गुरु साहब दा, आनंदपुर साहब दे किले दा की हाल है, की हाल है साहिबजादियां।

ते छोटे साहबजादे एक पासे, माता सुंदरी जी एक पासे, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वड्डे साहबजादियां दे नाल एक पासे, सारा परिवार बेरू खेरू हो गया, कोई किसे पासे कोई किसे पासे चला गया। हौली हौली भाई मान सिंह ते इन्हां दे साथी गुरु साहब दा पता लगा रहे ने। ये खबर घर घर फैल गई कि वड्डे साहबजादे चमकौर दी गढ़ी शहीद हो गए, छोटे साहबजादे सरहंद दीआं नीआं विच चुने गए ने, ते गुरु साहबां दा हाली कोई पता नहीं कि गुरु साहब किस पासे ने।

जिथे वड़े साहबजादे शहीद हुए उथों तुरे माछीवाड़े आए माछीवाड़े तो चले कई जगह होंदे साहब जी जगह जगह ठहर दे लखी जंगल पहुंचे संगता गुरु का जस गुरु के दर्शन करन वास्ते फिर आन लग पईयां ओही रौनकां फिर लग गईयां पुत्रां दे शहीद होण दा कोई गम नहीं जदों गुरु साहिबां दे धर्म सपत्नी माता सुंदरी जी ने पुछिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं महाराज मेरे चारों साहबजादे कित्थे ने ता गुरु साहिबां

जिन्ना हाली जूना है तुहाडे साहबजादियां ने सिखी दा महल होर पक्का कर दिता है अपना खून दे के। समा बीतिया गुरु साहब जी हुण कोट कपूरे पहुंचे, साहबां नूं पता लगा सरहिंद दा नवाब वजीर खान 5000 फौज लै के पिछा करदा आ रहा है। तां गुरु साहबां ने कपूरे नूं कहा, कपूरे आ साढ़े पिछे वजीर खान 5000 दे करीब फौज लैके आ रहा है, तू अपना किला दे तां कि इत्थे असी उहदे नाल दो हथ कर लईए। कपूरा अखवांदा गुरु दा सिख है पर औखा समा देखिया तां इह वी मूंह फेर गया। कहन लगा, महाराज मुगलां दा राज है, मैनूं मुगलां कोलों डर लगदा है, जे तुहानूं किला दिता ते मुगल मैनू खत्म कर देने, वजीर मैनू खत्म कर देवेगा, बादशाह मैनू सजा देवेगा। ता गुरु साहब ने कहा, जिन्हां दे मन विच डर है उन्हां दी सानू लोड़ नहीं। अज भी इहो जे लोग आए ने जिहड़े दुनिया दे सुख बदले पतत हुंदे ने, सिखी छड्डदे ने, अमृत तों दूर ने, पर जिहड़े इंसान अपने धर्म च पक्के नहीं, अपने गुरु दे उपदेश ते नहीं चलते, दुनिया दे सुखां अगे सिर झुकांदे ने, सच जानना उन्हां दा जीवना कुछ एहो जिहा जीवना है जिवें साहिब जी कहिंदे ने, जे जीवे पत लथी जाए

अचानक शरीर दा पतला हड्डियां दा मजबूत कमर कसा कीता ए है भाई मान सिंह म्यान विचु कृपान खिची जकारा छड़िया लकीर मारी लकीर टप्पी ते वंगार के किया भाई मैनू आज गुरु दे हुकम दा पता लग गया। मैं आज ये फैसला कर लिया है हम तो गुरहित

करेंगे कहां जो प्रभ काज ना अहे इह इस जीवन नु की करना है जे गुरु दी खुशी ना मिली सिखी गवा के जीवे ता क्या जीवे सेवा करदे आ सिखी निभांदे आ मौत होवे ता जीवन सफल हो ए गल भाई मान सिंह ने कही ता माई भागो हाथ विच सांग फड़ी इस वी लकीर टपी

मोर्चा संभाल के बैठ गए। एक सिख दरख्त ते चढ़े, उसने आवाज दिती के वजीर खान फौज लेके आ रहे। भाई मान सिंह ने कहा, एक गोलियां दी बुछाड़ छड़ो ताकि दुश्मन नु पता लगे गुरु दा दल इस पासे। गोलियां दी बुछाड़ छड़ी, वजीर खान भी गोलियां दा मीह बरांदा होया खिदराने दी ढाब वल वधिया। इधर गुरु के सिंह, उधर वजीर खान ते उहदे सिपाही, एक पासे तनखावां लैण वाले जिन्हां जानां भी बचाणियां ने, एक पासे ओ जिन्हां गुरु तों अपनियां जानां वारनियां। लड़ाई शुरू होई, गोलियां चलियां, तीर चले, लाशां ते लाशां डिग रहियां ने, धरती खून दे नाल लाल हो गई। उच्चे टिब्बी ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बैठे। दान सिंह कहन लगे, महाराज जापदा है दुश्मन ने हल्ला कर दिता है। ता गुरु साहब जी मुस्कुराते हुए कहन लगे, दान सिंह जे दुश्मन ने हल्ला किया है ता खालसे ने भी बोलबाला कर दिता। कमसान दा युद्ध शुरू हो गया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उच्ची टिब्बी ते बैठे, कदी कदी ऐसे तीर छड़दे ने जेड़े तीर वजीर खान दे जरनैलां सरदारां नूं लगदे ने, ते उन्नू बड़ा भारी नुकसान हो रहा। आखिर लड़दिआं लड़दिआं 13 सिंह बाकी रह गए। इन्हां 13 सिंघां ने हुण बंदूकां छड़ दित्तियां, किरपानां कढ़ियां, हत्थां विच ढालां फड़ियां, जकारे छड़ दे बेरियां दे उल्लों निकले ते दुश्मन दे उत्ते बिजली दी तरह टुट के पै गए। उन्हां सिंघां दा किरपाना सूत के दुश्मन ते टुट के पैना गुरु साहिबां ने

दियो ओज ऐसो हजारन जैसो महा को पठाने गज कीट माने बड़े उत्साहे रणंग शत्र गाहे उछलने छलेंगी गुरु के पुचंगी के मेरे पुचंगी मेरे पुत्र छाला मार मार के बड़े उत्साह दे नाल लड़ाई दे मैदान विच नितरे कल्ला कल्ला हजारां ते भारू पिया महा को पठाने गज क्रीट माने बड़े क्रोध दे विच दुश्मन ते टुट के पए हाथियां नू भी कीड़ियां दे समान समझदे ने बड़े उत्साह बड़े उत्साह विच लड़दे ने रणन छत्र गाहे रणन कहिंदे ने लड़ाई दा मैदान लड़ाई दे मैदान विच शत्रुआं नू अपने पैरां थले लताड़िया चले वीर सोउ बड़े उत्साहे परे शस्त्र मारे महा जंग माही कड़े म्यान तेग गहे अथ ढाले चलाकी करन ते सो छाले उछाले म्यान विच तेग कड़ी हथां विच ढाल फड़ी बड़ी चलाकी दे नाल छाला मार दे वार बचांदे वार कर दे ए सिंह दुश्मन दे नाल लड़दे पए साहब जी ने बड़ी सूर वीरता दा नजारा अपनी कलम नाल आप लिखिया कड़े म्यान तेग गहे अथ ढाले चलाकी करन ते सुछाले उछाले आखीर चटापट जुटे लटा लट होए सटापट सुटे कटा कट जोए कटा कुट कटे चटापट मारे खटा खट खोटे हटा हट हारे अखीर लड़दे मरदे ए सिंह भी शहीद हो गए। वजीर खान जद देखिया उसने के ना कोई तीर चल रहे है ना कोई गोली चल रही है इसने फतेह का डंका बजाया वापस मुड़ गया। हुण भाई मान सिंह मुदड़े मुपे है सेंट दा पे है सा टुटदे ने हुण भाई मान सिंह अरदास पिया करदा है ऐ कलगी धर पिता अज देख ले तेरी गली पैर पाया पैर पिछे नहीं फुटिया जिन्ना बल सी सारा ला दिता है हुण ते पासा परतन दी भी हिम्मत नहीं हुण कर कृपा मैनू दर्शन दे ओ बिदावा पाड़ दे जिदे ते लिखे है तू साडा गुरु नहीं असी तेरे सिख नहीं

हो गया। आप कई बार कह देने कोई मरे कि फलाना पूरा हो गया, नहीं, जिन्हें अमृत नहीं छकिया, गुरसिख परिवार विच जन्म लिया, सिखी विच पूरा नहीं, ना बाणी नाल जुड़िया, ना गुरु नाल जुड़िया, ना अमृत नाल जुड़िया, वो किवें पूरा हो सकता है। पूरा तो होया है भाई मास जिदा को जीवन नहीं चंगा, जिन्हें दुनिया का भला नहीं किया, जिन्हें ठगियां कीतिया, दुनिया नू धोखे दिते, अपने भले वास्ते लोकां नू दुख दिंदा है, वो जदू मरदा है वो कदी पूरा नहीं हुंदा। पूरा वो है जिहड़ा सच्चा जीवन जिउंदा है, जिनू रब मिले वो पूरा है, परमेश्वर पूरा है, ते उहदे प्यारे पूरे ने। वो पूरा कदी नहीं होया जिहदा जीवन उच्चा है। किन्नी कृपा होई भाई मान सिंह, एक ओदा मरना जिहड़ा गुरु तो बेमुख होके मरदा है, इत्थे भी फिटकारा, दरगाह विच भी फिटकारा, एक मरना भाई मान सिंह दा, उन्हां दे साथियां दा, जिन्हां दा संस्कार धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आप कीता, उस जगह ते नाले वर दिता। इस जगह दा नाम हुण मुक्त सर होवेगा, जिहड़ा इत्थे आएगा प्यार शरदा नाल वो मुक्ति नू प्राप्त होवेगा, वो जो मंगेगा उसनू प्राप्त होवेगा। अज जदों भी कोई मुक्तसर जांदा है, गुरु ग्रंथ साहिब जी नू मत्था टेकदा है, वो इन्हां शहीदां नू भी मत्था टेकदा है जिन्हां ने सेवा बदले, जाना वारियां, जाना दे नाल प्यार नहीं कीता, गुरु नू सच्चा उच्चा समझ के सेवा कीती, ते सानू राह दस्या है। भाई जिहड़ा सिखी गवा के पत्त धो के जिउंदा है, ओदा जीउणा

कि असां तां गुरु वास्ते प्राण देने ने और प्राण दिते भी। आओ भाई अरदास करिए, सच्चे पिता एहो जिहा जज्बा एहो जिहा उत्साह सानू भी दे तां कि तेरे राह ते चलदे होए सच ते चलदे होए दुनिया दे भले वास्ते जीविए जो तेरा मिशन है। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला अमृत छकीए बाणी नाल जुड़िए तेरे नाल जुड़िए धर्म वास्ते लड़िए अते अपना जीवन सफल करिए।

से महाबली महायोधे सर्वांशदानी अमृत के दाते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हें इस दुनिया में आके एक नवा काम किया, जिन्हें दुनिया ने नीच किया छोटे समझिया, उन्होंने अमृत छका के अपने वर्गे बना लिया। अगर कोई चमार अगर कोई चूड़ा भी अमृत छक लवे रहत बैत विच रवे गुरु दे उपदेश ते चले।

वाहिगुरु दी एही रजा है, मैनू परवान है। जिस हाल विच मेरा मालक खुश रहे, मैं ते ओही ओ कम करना है। जे उस दी रजा है, तवी दे उत्ते मैं बैठा, अग दे उत्ते मैं बैठा, मैनू परवान है। हजूर ने चौंकड़ा ला लिया, और चौंकड़ा लान दी देर सी, चंदू ने हुक्म कीता जलाद नू, कोल ही एक कड़ाहे दे विच रेत गर्म कीती जा रही सी। जदों ओ रेत गर्म हो गई, हुक्म कीता चंदू ने जलाद नू, इस रेत दे कड़छे भर भर के गुरु अर्जन देव दे सिर विच पा दे। थल्यों भी अग है, चारे पासे अग है, जालम उत्तों होर कहर कमा रहे है। हुक्म कीता रेत दे कड़छे भर भर के सिर विच पाओ, जालम ने रेत दे कड़छे भर भर के गुरु अर्जन देव दे उस पवित्र शीश उत्ते पौने शुरू कर दिते, जिस मुबारक शीश ते चवर चुलिया करदा सी। अज उत्थे गरम रेत दे कड़छे भर भर के पाए जा रहे ने। पर इस हाल विच भी अपने उस मालिक दे शुकराने

अंदर क्रोध दी अगन पड़क रही है। इना दे अंदर नफरत द्वेष भावना दी अगन पड़क रही है, जो इना नू मजबूर कर दी है कि ए जुलम करन। ए सोच रहे ने कि मैं भी इस तपस दा प्रभावित हो जावा, इस नाल मैनू भी कुछ प्रभाव पवे। पर मेरे गुरु ने, मेरे परमेश्वर ने जो मेरे अंदर एक नाम दा, जो सारियां शीतलतावां दा एक सोमा है, वो ऐसा अमृत नाम बख्शिश कीता है कि ए तपदे होए कड़ाहे, तपदे होए हिरदे उस नाम दी शीतलता नू प्राप्त करके शांत हो जांदे। पर ए शीतलता, नाम दी शीतलता उन्हां नू प्राप्त हुंदी है जिन्हां दे भाग चंगे होवन, जिन्हां दे श्रेष्ठ उत्तम भाग होवन। ए हरि नाम दी शीतलता उन्हां नू प्राप्त हुंदी है, वरना मनुख जबान तो ते जब जरूर जपदा उस परमेश्वर दा नाम, पर जे अंदर क्रोध दी अग्नि होवे ओ जपे दा कोई फायदा नहीं। जे अंदर लोभ दी लालसा होवे, जे अंदर नफरत होवे, द्वेष भावना होवे, उस रसना तो जपे दा कोई फायदा नहीं। तो हजूर गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सारे संसार नू एक शांति दा उपदेश दिता है। ए क्रोध दी अग्नि बुझ सकती है जे नाम दा शीतल अमृत ओ सरोवर ओ सोमा हृदय

प्राप्त हुई है, पूरे गुरु दा मिलाप होया, उदी बख्शिश हुई है। जमदूत मेरे नालों हट गए ने, उन्हां दा सहम मैनू हुण सता नहीं रहा, वो भज गए ने मेरे कोलों।

गुरुदेव बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था कि हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोली, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतनी निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले गए।

ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲ ਗਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਗੀਤਕ ਲੈ ਵਿੱਚ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਬੰਦਾ ਪਰਚਿਆ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਰਸ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜੀਵਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਗਾ ਕੇ ਕਰ, ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਕਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਕਰ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀ ਉਧਰ ਤਾਂ ਝਟਪਟ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਧਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਝਟਪਟ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਵੇਗਾ, ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਰਸ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਕਦੋ ਨਕਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ, ਇਹ ਪਤਾ ਨੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਜਾਪਦਾ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੋਝ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਪਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਧਰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰੰਗ ਲਾਗਤ ਲਾਗਤ ਲਾਗਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਤਲੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜੰਮਣ ਵਾਂਗੂ ਧਰਮ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੇ ਮੈਲ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਘਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਆਵੇਗਾ ਰਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ, ਰਸ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਰਸ ਆਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਸੁਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੁਣਾ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਲੜਕੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ। ਤੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ, ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਾਗ ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਸ ਲੈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾਏ ਧਨ ਮਾਰ, ਜੇ ਕੋ ਬੂਝੇ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਲਪ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੇ ਰਸਾਂ ਚ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਰਸ ਲੈਂਦਾ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਚ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਖਲੰਡਰਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਮੁੜੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਬਚਨ ਐਸੇ ਕਹੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਉੱਠੇ ਪਰ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਤੇ, ਕਈ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
बड़े दिनों बाद अचानक फिर दीवान विच आ गए। वो जेड़े लोग उस दिन का पै उड़ीकते सन किस दिन हाथ आवे, उन्होंने वेखी अज आपस च इशारे किए अज आया। सुथरा जी ने मत्था टेकिया, उन्हें पिछों आके छोपले च बाहां फड़ लई, खलबली पै गई। साहब कहन लगे, क्यों भाई ऐसा क्यों कर दे कि महाराज जी नूं पुछो ये सानूं गालां कढ के गया सी। साहब कहन लगे, माड़ी गल, सुथरा जी गालां कढ़ियां सन तुसां कि महाराज कदों दी गल करदे कि महाराज इन्हूं पुछो गालां कढ के नहीं गया, महाराज केड़ियां गालां कदों दी गल करदे। महाराज हस पए, कहन लगे, क्यों भाई तुहानूं पता है केड़ियां गालां किस दिन दी गल करदे, की गालां कढ़ियां सी कि महाराज संगत च कहिंदे शर्म आउंदी, बहुत गंदियां गालां कढ़ियां सन। महाराज इन्हां नूं पुछो किस दिन की गल है, क्यों भाई किस दिन की गल है। साहिबां ने भी परता के पुछया, किस दिन की गल है। एक दूजे नूं वेखण लग पिया, कहण लगे, महाराज दिन तां याद नहीं। कहण लगा, महाराज चंगा इन्हां नूं इह पुछो भी उस दिन कीर्तन होया सी, की प्रकरण सी, किस प्रकरण ते कीर्तन हो रहा सी, मैं दसांगा किहड़ा दिन सी। इह सिर्फ इह दस दिन, उस दिन कीर्तन किस मजमून ते हो रहा सी, कीर्तन च शब्द का भाव की सी। बड़ा सोचिया, कहने लगे, जी ये तो याद नहीं। अच्छा महाराज इन्हों पुछो भी उस दिन तुसा की किया सी, तुहाडे बचन तुसा भी तो विचार कथा बख्शिश कीती सी ना, इन्हों पुछो भी उस दिन तुसा की बचन कीते सन, तुहाडे बचन दस दिन फिर मैं भी दस देंगा किदन की गल है। एक दूजे वाल वेखिया, सोचिया, कहने लगे, जी ये भी याद नहीं आता तुसा की बचन उस दिन कीते सन। बाहां उचिया कीतियां, झटका मार के उन्होंने खो के बाहां उचिया कीतियां। सुथरा जी कहन लगे महाराज जी ये मेरे सिख ने तुहाडे कोल। उन्होंने होर गुस्सा चढ़ गया, कहन लगे, महाराज देखो उस दिन तां गालां कढ़ियां, अज तुहाडे सामने देखो किड्डी वधीकी पिया करदा। कहिंदा, मेरे सिख ने इस खलंडरे दे इस पतंदर दे असां सिख होणा, इह की पिया कहिंदा, असीं तुहाडे सिख हां। कहन लगा, महाराज मैं दावे नाल कहिंदा, साबित करांगा, इह मेरे सिख ने, ना तुहाडी बाणी याद है इन्हां नूं, ना तुहाडे बचन याद ने, ना तुहाडी कथा याद है, मेरियां गालां तुहानूं दसण नूं तैयार ने सारियां, किहड़ियां किहड़ियां कढ़ियां सन, मेरियां गालां चेते कीतियां ने, तुहाडे बचन याद नहीं कीते। साहब मुस्कुरा पए, उन्हां नूं बड़ी शर्म आई, वाकई सुथरे दियां गालां तां याद रख लईआं, गुरु के बचन याद ना रखे, क्योंकि चित गालां ते टिकिया होया, कच्चियां पिलियां गल्लां ते चित टिकिया होया, अजे बाणी ते चित टिकिया नहीं सी, शर्मिंदे हो। किसी प्रेमी ने उठ के शिकायत की, कहन लगे, महाराज वेखो ना, कुछ भी हो ठीक है, इन्हां लोकां दी गलती है, इन्हां ने गालां वल बहुता ध्यान कीता है, पर सुथरा जी नूं भी इंज नहीं चाहिए, बहुत सिरे चढ़ा रखिया, बहुत परेशान करदे, किसी किसी वेले तां बहुता ही तंग करदे। साहब कहन लगे, देखो गल्लां सुथरा भी करदा, तुसीं भी करदे हो, असीं भी करदे हां, सिरजनहार दीआं गल्लां असीं करने हां, संसार दीआं गल्लां तुसीं करदे हो, पर सुथरा जी गल करते ने वो इस करके करते ने कि झटका मार के जिवें किसी सुते नूं जगाउणा हुंदा है, जे तुहाडा बाणी वल ध्यान नहीं ते बाणी वल तुहाडा ध्यान दवाउण वास्ते सुथरा जी तुहानूं इक झटका दिंदे ने, इहनूं दुश्मनी ना समझो, इहनूं मित्रता समझो, जिस गल दे नाल तुहाडे मन नूं झटका लग के तुहाडा मन मोड़ा खा के गुरबाणी ते गुर बचना वल लगे, वह सुथरे की गल ते वह हरकत जिहड़ी है माड़ी ना समझो, वह तुहाडी मित्रता ही तुहाडे भले विच है। और कदे सोचिया होवे मेरा मन भी गुरबाणी वल जागे है कि नहीं, सिरजनहार दीआं गल्लां वल जागे है कि नहीं, इस भरपूर रस लैण वाले पासे मेरा मन तुरे है कि नहीं। साहब पंचम पातशाह नूं पुछिया सिखां ने, कहन लगे, महाराज देखो ना, पंछी जागदे ने ते उह बोलदे ने, पता लग जांदा है अपने आप ही पंछी जाग पए, रोशनी हुंदी है पता लग जांदा कि सूरज चढ़ पिया। हर एक शय दा जागना अपने आप जे ऐलान लै के आउंदा है, हर शायद ये जागर में एक ऐलान है, पता लगता है कि फलानी चीज जागी। ते महाराज मनुख कदों जागदा है, ध्यान देना, असी वैसे बिस्तरे चो जागने और जागना कुछ होर है, साडे अंदर धर्म का जागना कुछ होर है। कह लगे, महाराज बंदे का जागना की है, मनुख का जागना की है। ते साहिबा ने बचन किया, साहब कहन लगे, जिस दिन गुरु की बाणी मनुख नूं मिठी लगन लग पवे ना, समझ लेना बंदा जागदे। जौ मृद लाग गए गुर की बाणी, मन जागण की यह है निशानी। समझो मन जाग पिया जिस दिन गुरु नानक की बाणी मिठी लगन लग पवे। भाई साहब भाई संतोख सिंह दे बचना च महाराज कहन लगे, सिखो जिस दिन तुहाडे मन नूं बाणी मिठी लगन लग पवे, समझ लेना उस दिन मन जाग पिया।
जिदन रस आना शुरू हो जाए और रस आवेगा। यह गल वखरी है कि इस पासे का रस जरा हौली हौली शुरू होता है। आप तुखारी के बारह माह च महाराज धन गुरु नानक पाशाह का एक बचन पढ़ने, असुन आओ पेरा साधन चूरम हुई, प्यार दी बद्दी हुई, बिरहन जेड़ी है वह झुरदी है कि किहड़े वेले आके मिलाप दियां घड़ियां प्राप्त हो, पर वह झुरदी जेड़ी उतावली जेड़ी दूसरे पासे गुरमुख बिरती वाली वह कहती है ता मिली है प्रभ मेला है दूजे भाई सरकड़े खड़े हो जाएंगे, तरह तरह के बूटे बेकार के पौधे खड़े हो जाएंगे। और इसे भाव की एक साखी भी दसते ने, कहते ने किसी महात्मा के डेरे के आले दुआले थां पई सी, चेले नूं कहन लगा देख बरसाता हो गई हटिया ने, इत्थे कुछ ऐसे बूटे ला दे इस थां नूं साफ करके, जंगल विचों पनीरी अपने आप उठी हुई है, कुछ अंबां दे कुछ रसदार फलां दे बूटे लिया के ला दे ताकि आने जाने वाले साधां की सेवा वास्ते तैनू दूरों फल लैन ना जाना पे, इतों ही फल लैके उन्होंने पेश कर दिया करांगे ते अपना भी काम चलता रहे। सत बचन तो कह दिता पर मनिया कोई ना, बहुत लोग ऐसे होंगे ने सत बचन तो कह देंगे अमल नहीं करते, सत बचन कह दिता कीता कुछ ना, नतीजा होया बरसातों तो बाद उस धरती विचों बेकार के बूटे उठने शुरू हो गए, का बाथू सरकड़ा कई कुछ उठिया, वह सारी धरती जिहड़ी सी ना बेकार के बूटियां नाल भर गई। सर्दी आई लंघ गई वह बूटे होर मजबूत होंदे चले गए, गर्मी आई वह सुक गए उन्होंने जड़ां विचों अगलियां बरसातों च होर कुछ नवा नवा फुट पिया। महात्मा कहन लगे काका तैनू कहा सी ये धरती साफ करके फलदार बूटे ला दे, कह लगा जी बस थोड़ी जी ढिल हो गई, तो फिर वेख्या भी खुला समा मंगते ने पटन पटाण, कह लगे हुण भी कर लै नहीं तो इन्हां दी जड़ां होर गहरियां होंदियां जाणगियां तेरी मेहनत होर वधदी चली जाए। औखा सौखा होके लग पिया लगिया थां साफ कीती, जंगल विचों पनीरी लियांदी लिया के ला दित्ती, सर्दियां विच उस पनीरी की रखिया की, गर्मियां दियां तत्तियां लोहां तो उन्होंने बचाया, अगलियां बरसातां आ गईयां गोडी कर करके उन्होंने आले दुआले होर कोई घाह बूट पैदा नहीं होने दिता, उसने वह बूटे थोड़े थोड़े उठे ने, कोई गोडे गोडे आ गया है कोई लख लख तक आ गया है, कई अजे बहुत छोटे ने। एक सर्दियां एक बहार एक गर्मी होर लंघ गई, कुछ बूटे जो सन कुछ बूर ते आ गए, किसी अजे कुछ भी नहीं लगा किसी किसी बूर आ गया, बड़ा प्रसन्न होया कह लगा महात्मा जी बूटिया बूर आ गया हूं फल लगेगा, कह लगे बूर झाड़ दे, क्यों कह लगे बूटे अजे बहुत छोटे ने इस फल च मिठास नहीं भरनी, हुक्म मन के बूर झाड़ दिता। एक वरा होर लग गया, तीजे वरे जाके उन्होंने बूटिया चो बहुतियां फल लगे, फल बड़े मिठे आए, फल लिया के महात्मा दे पेश किए, कह लगे लो तुहाडी आग्या अनुसार मेरी कीती हुई मेहनत का फल, थापड़ा दिता बड़े प्रसन्न हुए। कह लगा महात्मा जी गल पुछनी दसो, कह लगा वह जिहड़े घाह सरकड़ा ते बेकार के बूटे सन वह तो महीने में ही बंदे बंदे जिडे हो गए सन, यह तीन साल मसा जाके फल देने जोगे हुए ने, गल की उन्होंने बड़ी कीमती गल की, कह लगे जिन्होंने रस देना होंदा हौली हौली फल दे, जिन्होंने कंडे देने होंदे ने उहदे चुटकल आउंदे, जिस रोटी ने अंदर जाके बीमार कर देना उस जबान ते बड़ा स्वाद देंदी, जिस सिमरन ने जीवन सवार देना वह हौली हौली स्वाद देंदा, उहदा रस हौली हौली आवेगा, पर जिस दिन आ जाएगा ना उहदे सामने बाकी रस आन रसा सब हो छेरे बेकार हो जाएंगे, उस दृढ़ता वाला पक्का सदीवी टिकन वाला रस है, पर आएगा हौली हौली आएगा सिरजनहार दीआं गल्लां विचों आएगा, जिन्हां चिर बेकार दीआं गल्लां विच सिर ते भार पैण वालीआं गल्लां विच लगे रहांगे उन्हां चिर इस रस्ता आपां जरा जिन्ना अंश मात्र भी चख नहीं सकदे। साहब कहिंदे ने मैं अपने दिमाग ते गल्लां दा बोझ पा रहा, उल्टी बेसवादी खड़ी कर ली, मैं गुण गल्लां कै सिर भार, गल्ली गल्लां सिरजनहार, जे गल्लां दा ही रस लैणा ते सिरजनहार दीआं गल्लां च बड़ा रस, खाणा पीणा हसणा बाल जिहड़े निक्के निक्के स्वाद बणे होए ना ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਕਾਰ ਨੇ, ਜਬ ਲਗ ਹਿਰਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਯਾਦ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਚਲੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਵਾਦ ਬੇਸਵਾਦੀ ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਤੋ ਪਰਵਾਹ ਕਹੀ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਿਛ ਲੀਜੀ ਲੀਜੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਚ ਪਏ ਨੇ,
मन की मत, मन की मत पिछे लगी, मतागल मता मते हाथी वांगू झूमदे तुरे जांदे ने पता ही नहीं की कर रहे। जो कुछ बोली है सब खतो खता, जो गल करते ने गुनाह बन जाती। फिर क्या मूल है कीचे अरदास, पाप पुन दो साखी पास, जिंदगी च उन्ना दी अनहोन ते पापा दी होन, ये अरदास करन जोगा मूंह भी तो नहीं रहन देते। की मूल है कि अरदास करांगे प्रभु दे दर अगे, बख्शे जान दी अरदास करन जोगे भी तो कोई ना रहेगा। क्या मूल है कीचे अरदास, पाप पुन दो साखी पास, बेवसी भी दसी है, जैसा तू करे तैसा को होए, तुद बिन दूजा ना ही कोए, जे ही तू मत दे ते ही को पावे, तुद आपे भावे तिले चलावे, पर नाली प्रेरणा